0: गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिसने गोविंद यो बताए। गुरु ए तो परम आदरणीय अने वंदनीय होय छे। जूना जमानामां राजा महाराजाओ राजगुरुनी सलाह सूचन प्रमाणे राजकाज संभाळता। गुरुनी गादी पण अलग अने सन्मान जळवाय ते रीते राखवामां आवती। आम जो गुरु पोतानी गुरुता जाळवी राखे तो समाज सन्मानी ज अने शिष्यो पण उत्तम पैदा थाय। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर भक्ति संगीत। मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आएगी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर हमें कुछ तकलीफ है तो फौरन हमें जाकर उसकी इंक्वायरी करना चाहिए और उसकी तहकीकात कर जरूरी इलाज हमें टाइम पर कराना चाहिए।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है, इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है, प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को, विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा, प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे, आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
2: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
3: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
2: जी।
3: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
2: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
3: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्ली

0: ये भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था। वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
1: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
0: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
1: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
0: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है। और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए।
1: जी,
0: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
1: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
0: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
1: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
0: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
1: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
1: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।

0: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
1: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे

0: जो राष्ट्रपिता थे कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। राम धुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू भर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: प्रणाम।
4: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
5: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
5: अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
5: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
4: जी बापू।
5: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
1: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
5: अच्छा, अब सोचो, इस इमारत

0: का नाम क्या रखा जाए?
1: कुछ खास होना चाहिए।
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
1: बाबू धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
0: धर्मशाला, हाँ ठीक है धर्मशाला।
4: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
1: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
4: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
0: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
1: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही।
4: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में। हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे, अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।

0: राम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
1: अच्छा बताओ क्या बात थी?
2: बापू बापू ये सब बस एक मजाक था।
1: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
2: जी बापू मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
3: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बेच जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो।
3: टमाटर काट लो।
2: हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
4: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
4: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
4: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
4: ठीक है चंपा, ठीक।
5: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर
4: काट। मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
4: नमस्कार बापू।
5: प्रणाम बापू।
6: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
4: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
6: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
6: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
6: अच्छा जाओ।
2: जी।
6: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
4: जी, जी।
2: चलो चलते हैं।
4: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो

0: उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
1: बापू बापू ये देखिए।
2: अरे हाँ हाँ बिमला आओ, कहो कैसे आना हुआ?
1: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं, दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
2: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना
1: जी,
2: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ।
2: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए, उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
2: हाँ, समझ गई ना?
1: जी।
2: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू, धन्यवाद।
0: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
2: अरे सुधीर, नहीं अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हाँ?
2: अभी तो इसे और चमकाना।

0: ये लो, अब देखो अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
1: चमकने भी लगा।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
1: हाँ जी बापूजी।
0: हाँ शाबाश।
2: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
4: उमंग, उमंग। सुंदर अक्षरे पैराग्राफ लकी ने पोस्ट करो, विजेता बनी ने जीतो आकर्षक ब्रांडेड स्मार्ट वॉच अने कलर सर्टिफिकेट। मिस्टर कल्पेश पटेल मास्टर कैलिग्राफर आर्टिस्ट एंड टीचर पालनपुर बनासकांठा तेमज वैशाली पटेल कॉम्पिटिशन कोऑर्डिनेटर द्वारा आयोजित गुजरात राज्य कक्षा नी लेखन स्पर्धा मारा अक्षर सौथी सारा अक्षर 2026। आ स्पर्धा नी प्रारंभ तारीख छे 2 ऑक्टोबर 2026 गांधी जयंती। पैराग्राफ मोकलवानी छेल्ली तारीख छे 31 ऑक्टोबर 2026 सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती। जेनु रिजल्ट आवशे 8 नवंबर 2026। वधु माहिती माटे आपना व्हाट्सएप परती 9909488363 पर हाई मैसेज करीने मोकलू। तो भूलता नहीं गुजरात राज्य कक्षानी लेखन।

90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 95 12 96 88 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

बक्का पालनपुरी न्यू ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामल तो रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

गॉड फादर के खुद के बलबूते पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, वो सितारे जो सेल्फ मेड हैं और आज हिंदी सिनेमा को जिन पर गर्व है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस अभिनेता की जिन्होंने एंटरटेनमेंट को एक नया नाम दिया, जिनका मानना था कि नेशनलिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, और उन्होंने ये अपनी फिल्मों के साथ में दर्शाया।

कुमार जी की। वैसे मनोज कुमार जी का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। मनोज साहब ने काफी ऐसी बॉलीवुड फिल्में दी हैं जो हमेशा याद रहेंगी, स्पेशली उपकार, क्रांति, शहीद, जहां पे उन्होंने देशभक्ति को प्रमोट किया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन में भी बहुत काबिल थे मनोज जी। इनफैक्ट उनका तो सपना था कि वो डायरेक्ट करें दिलीप कुमार जी को, और वो पूरा भी हुआ क्रांति फिल्म के साथ। अनडाउटेडली मनोज साहब ने अपनी फिल्मों के द्वारा बॉलीवुड में पेट्रियाटिज्म जिंदा रखा। ऑल्सो एक बार खबरें तो ऐसी भी आई थी कि धर्मेंद्र साहब बॉम्बे छोड़ करके चले जाना चाहते थे क्योंकि उनका लक ज़्यादा चल नहीं रहा था, लेकिन उस समय मनोज जी ही थे जिन्होंने उन्हें रोका और कहा कि अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। मनोज कुमार जी की मेहनत के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, और चलिए अब मेहनत से बनाया हुआ हमारे मिस्टर भारत, इस नाम से भी जाने जाते थे वैसे मनोज जी, तो उन्हीं का गाना सुनते हैं अगली फिल्म से, लग जा गले गाना। वो कौन थी फिल्म से लता जी की आवाज़ में।

रफी साहब की आवाज में काला बाजार से था ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज जो गाने मैं आपको सुना रही हूँ वो कुछ ऐसे सितारों के हैं जो कि सेल्फ मेड स्टार्स हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, फिल्म काला बाजार में मुगले आजम फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया था और देव साहब का कैरेक्टर जो था वो ब्लैक मार्केटिंग करता है इस प्रीमियर शो के टिकट्स के। वैसे अपने टाइम के सुपरस्टार देव साहब को प्यार से चिरू भी बुलाया करते थे लोग। उनकी फैन फॉलोइंग तो आप जानते ही हैं कितनी रही होगी उस समय। आप क्या ये जानते हैं कि उन्हें पब्लिक में ब्लैक सूट पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि लड़कियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थीं और कहते थे कि कहीं कोई आपको देख के किसी खिड़की या बालकनी से जंप ना कर दे, इसलिए आप यूं कहर मत ढाइए। वैसे तो पहली बार एज अ लीड रोल उन्हें जिद्दी फिल्म में देखा गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें अपना पहला ब्रेक अशोक कुमार जी ने दिया था, वो भी यूं ही चलते फिरते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कि अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज के गार्डन में अपने दोस्त से कुछ डिस्कस कर रहे थे कि किसे कास्ट करना चाहिए उनकी फिल्म के लीड रोल के लिए, और तभी कोइंसिडेंटली देव साहब भी वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था, उन्होंने देव साहब को देखा और उनकी फिल्म के लिए देव साहब को भी एज अ हीरो साइन कर लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत एक स्ट्रगल के साथ होती है। देव साहब ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। एक्टिंग से पहले उन्होंने एक अकाउंटेंसी फर्म में एज अ क्लर्क काम किया था और उससे उन्हें सिर्फ कुछ 85 रुपये की सैलरी मिला करती थी। खैर, इतना स्ट्रगल किया उसके बाद ही तो वो इतने बड़े स्टार बन पाए, अ सेल्फ मेड स्टार देव साहब। उन्हीं की फिल्म से अगला गाना, गाइड फिल्म से अगला गाना आपको सुनाऊंगी मैं किशोरदा और लता जी की आवाज़ में, और कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे एक नॉर्मल सा इंसान रवि कपूर बना सुपरस्टार जितेंद्र।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: संभाल।
1: लता जी और रफी साहब की आवाज में था ये गाना कारवां फिल्म से, जितेंद्र साहब की ये फिल्म। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स रहे हैं जितेंद्र।

जी अपने जमाने में, है कि नहीं? नाम वैसे इनका रवि कपूर हुआ करता था और बॉलीवुड में इनके जिस तरह से एंट्री हुई उसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी ही है। जी हाँ, जीतू जी ने तो सोचा भी नहीं था कि वो कभी एक्टिंग करेंगे। वो तो अपने माँ बाप के साथ में उन्हीं के प्रोफेशन, उन्हीं के बिजनेस में मदद किया करते थे। हुआ यूं कि उनके पेरेंट्स इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस किया करते थे और एक दिन वो वी शांताराम जी से मिलने गए ज्वेलरी सप्लाई करने के लिए। शांताराम जी को ये क्यूट सा हैंडसम सा लड़का इतना पसंद आ गया कि उन्होंने जितेंद्र जी को नवरंग फिल्म का ऑफर दे दिया। जीतू जी ने भी मौके पर चौका मारा और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऐसे कुछ हुई हमारे जीतू जी के करियर की शुरुआत। और वो शांताराम जी ही थे जिन्होंने रवि कपूर का नाम बदल के जितेंद्र किया। आप तो जानते ही हैं कि जीतू जी हिमा जी से प्यार किया करते थे, जो भी कहो लाइकिंग तो थी उस समय, लेकिन बाजी मार ले गए धर्मपा जी। वैसे धर्मेंद्र जी ने भी काफ़ी तरकीबें करी थी बॉलीवुड में आने के लिए। वो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे और वो उनकी माँ थी जिन्होंने सजेस्ट किया था धर्म जी को कि क्यों ना तुम एक रिक्वेस्ट लेटर लिख करके भेजो। तो उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में अपनी फोटोज के साथ एक लेटर भेजा था एप्लीकेशन के साथ में, और बस किस्मत चल पड़ी, पंजाब से धर्मपा जी मुंबई आ गए, कॉम्पिटिशन जीत गए और फिर 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने डेब्यू किया। आइए सुनते हैं धर्मपा जी की ही फिल्म लोफर का गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है।

मैं हूं रुचि आपके साथ। ये गाना था दिलीप कुमार जी की फिल्म मधुमति से। वैसे दिलीप साहब जैसे लिविंग लेजेंड जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है हिंदी सिनेमा में, उनके पास एक जमाने में इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने घर से स्टूडियोज तक जा पाए। उस समय जो BCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे PM रुंगता जी, उन्होंने दिलीप कुमार जी को बड़ा सपोर्ट किया था। उस समय ट्रैम के टिकट्स के पैसे भरना, बाकी कुछ यूं ही रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे देना, वो सभी मदद किया करते थे दिलीप साहब की जब वो एक स्ट्रगलर थे। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई, उन्होंने तो एक्टिंग को एक नया परिचय ही दे दिया। ही वॉज ट्रूली अ सेल्फ मेड स्टार। वैसे एक्टिंग के अलावा और किसी चीज़ के लिए अगर वो पॉपुलर थे तो वो थी उनकी लव स्टोरी सायरा बानू जी के साथ। लेकिन अगर आपको

लगता है कि सायरा बानू जी की जिंदगी में सबसे पहले दिलीप साहब ही आए तो आप गलत हैं। सायरा जी और राजेंद्र कुमार जी भी बड़ी चर्चाओं में रहा करते थे। काफी सारी मूवीज इन दोनों ने साथ में की थी, तो शूटिंग के दौरान दोनों में थोड़ा प्यार सा उमड़ गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त राजेंद्र जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी वाइफ ने सायरा जी की मम्मी नसीम बानो जी से कहा कि वो अपनी बेटी को राजेंद्र साहब से दूर रखें। फिर क्या था, नसीम जी ने दिलीप साहब से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो पसंद करते ही हैं। दिलीप साहब ने साफ मना कर दिया था क्योंकि सायरा जी उनसे 20 साल छोटी थी उम्र में, लेकिन नसीम बानो जी ने जैसे तैसे दिलीप साहब को कन्विंस कर ही लिया और कुछ ऐसे दिलीप साहब ने राजेंद्र साहब की शादी भी बचा ली। वैसे राजेंद्र जी भी एक सेल्फ मेड स्टार थे, बेहतरीन मूवीज दी हैं इन्होंने अपने समय में, और इन्हीं की फिल्म संगम से सुना रही हूं मैं आपको।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।